वसी और मुहीत में क्या फर्क है? मुहीत यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह ताला के इल्म में ना हो, और वसी इतनी ज्यादा इल्म है कि उसको कोई जान नहीं, ना तो कोई जान सकता ना कोई तोड़ सकता है, उसे कोई समेट नहीं सकता। और दोनों मायने कुरान मजीद में आए, अल्लाह ताला फरमाते हैं मुहीत के मायने में, इन अल्लाह बिमा यअमलून मुहीत, बेशक अल्लाह ताला जो कुछ वो करते हैं अल्लाह ताला उनके हर अमल का मुहीत है, अल्लाह ताला के इहाते में है, यानी अल्लाह ताला का इल्म है, मुहीत इल्म में है। और दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये आयत जो है सूरत आले इमरान आयत नंबर 120 और सूरत निसा आयत नंबर 126 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वकान अल्लाह बिकुल्ली शैइन मुहीता, और अल्लाह ताला हर चीज को मुहीत है। और मुहीत में अलीम का माना शामिल है, क्योंकि इहाता बगैर इल्म के नहीं होता, तो मुहीत जो है वो अल्लाह ताला के नाम अलीम को शामिल है। और वसी इल्म की दलील या वसी इल्म का माना जो है अल्लाह ताला फरमाते सूरतुल अनआम आयत नंबर 80 में 80 में, वसी रब्बी कुल शैइन इल्मा अफला ततज़क्करून, मेरे रब ने हर चीज के इल्म पर वुसअत है, मेरे रब की हर चीज के इल्म पर वुसअत है, क्या तुम फिर भी नसीहत हासिल नहीं करते? यानी ये इतना अजीम रब है जिसका इल्म इतनी वसीह है कि जमीन और आसमान, मशरिक और मगरिब, आलम उलवी आलम सुफली, आसमानों से ऊपर और अर्श से ऊपर और जमीन के नीचे और पूरी कायनात में जो कुछ भी मौजूद है, अल्लाह ताला का इल्म की वो शायद वहां तक पहुंची है, जहां पर वजूद भी नहीं वहां पर भी अल्लाह ताला का इल्म पहुंचा है। और एक दरस में मैंने कहा था कि हमारा इल्म जो है, जैसे आगे में लतीफुल खबीर आ रहा है उसमें भी इल्म का मायना है, देखें उस फर्क देखें, बारीक भी नहीं देखें, कि अल्लाह ताला का इल्म इतनी वसीह है, इस वसीह इल्म में लतीफुल खबीर भी शामिल है,